0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Like a Radio.

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

Hacker Radio. क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: जिंदगी। Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Louisa Gale, and it is moving a lot better now. Southbound on the M42, all lanes have reopened from this morning's accident between Junction 9 for Coleshill and the M6 interchange at 8. However, it remains slow. Southbound on the M1, that remains partially blocked by this morning's incident around the A46 at Junction 21A. And no change in Wren's Nest for Wren's Hill Road. That's still closed from the fire between Hillside Road and Linwood Road. Of course, I like to get very busy inside of Birmingham through Hall Green on the A34 Stratford Road. Temporary lights now in place there for works around Colbank Road. And like to get busy into out of Stourbridge through Wollaston on the A458 Bridge North Road because the temporary lights now in place near Cobden Street.
0: Like a radio.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Lela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice, 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee, 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box, 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils, 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt, 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi, 2.99 per kilo. Offers one from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollards Hill, Leicester, LE54UN.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Good morning. संगीत की एक और सौगात, प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ एक और म्यूजिकल मुलाकात, एक और दिन जिंदगी का एक और मनोरंजन लेकर आपका दोस्त रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। सोमवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की आज है 20 तारीख। कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत बढ़िया रहा होगा। मैं हमारा बहुत अच्छा रहा, सात्विक भी रहा, हसीन रंगीन भी रहा, मेला था, रवि शर्मा बिल्कुल नहीं अकेला था। मैं रथ यात्रा का आनंद लिया, लोगों से मिले, मुलाकातें हुई, बातें हुई, और जब वो भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का अवसर मिला और भाई राजनेताओं से, सामाजिक लोगों से, बहुत सारे भाई पुराने श्रोताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। कैंटन में स्वामीनारायण मंदिर से लेकर के और भाई वुड लेन स्थित स्टैनमोर के स्वामीनारायण मंदिर तक रौनक ही रौनक। इसके अलावा भाई और भी कई काम पूरे किए, बाकी इस सप्ताह में निपटाएंगे। अब आपका दिल बहलाएंगे, दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं और ये बताना चाहता हूं कि ना एक से ना दो से हजारों से ज्यादा, जमाने के रंगीन नजारों से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा सुनो अपनी एक मुस्कुराहट की कीमत, गुलिस्तां की लाखों बहारों से ज्यादा। डेफिनेटली कुछ गीत में कह देंगे।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is the freshest sound across the Midlands. We are Like a Radio.
0: सुनो अपनी एक मुस्कुराहट की कीमत, गुलिस्तां की लाखों बहारों से ज्यादा। नहीं दरमियां कोई अपनों सा बंधन, मगर तेरी चाहत तेरे प्यारों से ज्यादा। तुझे प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा।

0: भाई क्या बात है, हुस्न की तारीफ करने का ये अंदाज ऐसा भाई भाया लोगों को कि बहुत लोगों ने इसे बार बार गाया, सुना और दिल में उतारा। स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में आई थिंक मनोज कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ था ये गीत। फिल्म का नाम था, क्या नाम था फिल्म का, हिमालय की गोद में फिल्म का गीत था। और भाई इस तरह से ये गीत हमने आप तक पहुंचा। अब जो गीत पहुंचा रहे हैं इसे सुनिए और उसके बाद खबरों के लिए तैयार रहिएगा। काफी कुछ हुआ वीकेंड पर भाई, एक तो वो फुटबॉल का महाकुंभ उसका समापन हुआ, हाँ और भी कई घटनाएं घटी हैं। क्रिकेट का तो चल ही रहा है भाई, वो भी सीरीज जो है इंग्लैंड के हिस्से में गई, लेकिन बहुत अच्छा खेल, जबरदस्त प्रदर्शन। इंग्लैंड ने तीसरे स्थान के लिए वर्ल्ड कप मुकाबले में भाई मनवाया कि हम भी ठीक है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन तीसरे नंबर पर तो आए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: देखा वर्ल्ड कप, देखा ट्रंप ताऊ जी आए। आजकल ट्रंप जी जो कहते हैं मैं फैसला कराता हूं, बहुत जंगे रोकी हैं मैंने, बहुत समझौते कराए हैं, तो वो मैच में एक बॉल को लेकर के मारामारी चल रही थी, उनको समझा बुझा के क्यों नहीं कहा कि भाई मत खींचो इतना लंबा मैच को, बोले अवार्ड मैंने देना था इसलिए।

0: दुश्मन दोस्तों से ज्यादा प्यारा। भाई ये गीत लगा कुछ न्यारा। हाँ आपको बता दें ये गीत आप तक कौन पहुंचा रहे थे?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अरे साहब इन्होंने तो वो गीत सुनाया था जो चांद सी महबूबा वाला था। ये गीत तो आप तक पहुंचा रहे थे ये लोग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट। ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और मनोरंजन सिर्फ गीतों के द्वारा ही नहीं भाई, बातों से भी कुछ जानकारी पहुंचाते हैं हम आप तक और सुनवाते हैं खबरें भी। और खबरों में जो सबसे गर्म खबर वो तो ये है कि भाई यहाँ जो परिवर्तन हुआ है लीडरशिप में, बर्नहम टू मीट किंग एंड एंटर डाउनिंग स्ट्रीट विद बिग कैबिनेट अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड। एक बड़ा मंत्रिमंडल उनका होगा, देखते हैं किन किन के नाम मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में आज किंग से मिलकर के फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करेंगे। और भाई उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे अटकलें लगाई जा रही हैं, मैं आपको बता दूं भाई, मैंने तो साफ इनकार कर दिया मैं फ्री नहीं हूं, बस साफ बात है कहीं करना। मैं मेरे भरोसे मत रहना प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कैबिनेट का निर्माण कीजिए और फिर भाई हम उन्हें खबरों में चर्चा में लाएंगे। और क्या कुछ है भाई आज की समाचारों में, गंभीर हो जाइए, लेट्स सीरियस होकर के सुनाते हैं आपको आज के समाचार। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। शुरुआत करें फीफा वर्ल्ड कप से। हो गया भाई ये इतने दिनों तक चलने वाला मेला जो है उसका समापन हो गया कल। बड़ा जबरदस्त मैच था फाइनल का, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी ज्यादा जो रोचक मुकाबला था वो तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। 10 गोल एक ही मैच में हुए। इसके अलावा जो उपलब्धियां इस वर्ल्ड कप मुकाबले की, फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट जीतकर इतिहास रच दिया है। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल दागकर अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में दूसरे नंबर पे रहे। सेमीफाइनल तक एम्बापे और मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ बराबरी पर थे। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में एम्बापे ने 2 शानदार गोल दागकर अपने गोलों की तादाद जो है वो 10 तक पहुंचा दी। और इससे पहले एम्बापे ने 2022 कतर वर्ल्ड कप में भी 8 गोल करके गोल्डन बूट जीता था। कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस इंग्लैंड की टीम को भी भाई, तीसरे स्थान के लिए उन्होंने फ्रांस को ही हराया। हालांकि फ्रांस तीसरे स्थान के मुकाबले में हार के चौथे नंबर पर रहे, लेकिन एम्बापे का प्रदर्शन जो है पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। एक और खेल का चर्चा करें भाई, क्रिकेट का। क्रिकेट में भी भाई बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था। इंग्लैंड ने भारत को हराकर 2-1 से ये वनडे सीरीज जीती, लेकिन रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलों पर शुभमन का एक स्टेटमेंट आया है। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भाई कितने बनाए थे, 87 रन बनाए थे। बहुत बड़ा स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में 387 का। लेकिन भारतीय टीम भी भाई कम नहीं थी, उन्होंने 7 विकेट पर 360 रन बनाए, 27 रन पीछे रह गई टीम। लेकिन प्रदर्शन भाई रोहित शर्मा का और विराट कोहली का और भी कई खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा। मैच जीता, क्रिकेट जीता और साहब बहुत अच्छा प्रदर्शन जीता इसमें। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की चर्चाओं पर कहा कि उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मीडिया में आया है ये बयान सुनने को, लेकिन टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। भाई अगर आपके रेडियो सेट पर ये थोड़ी सी गूंज सुनाई पड़ रही हो तो उसके लिए क्षमा करना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा हेडफोन लीक ना हो, लेकिन हो रहा है, इसे और कम करें। लीजिए दूसरी खबरें। भारत से आने वाले समाचारों में काकरोच जनता पार्टी की ओर से आज शांतिपूर्ण संसद मार्च का आह्वान किया गया था, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी। और इसी बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहले से ही एक ट्रक खड़ा किया हुआ है पत्थरों से भरा हुआ। दिल्ली पुलिस को कहते शर्म आनी चाहिए, जंतर मंतर पर पहले से ही एक ऐसा ट्रक खड़ा किया हुआ है, एक टूटी हुई वैन रखी गई है। जल्द ही मोदी मीडिया ऐसी खबरें चलाएगा कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए वैन में तोड़फोड़ की। भाई ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ ही ये खबर भी आ रही है कि काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से आज का शांतिपूर्ण संसद मार्च जो है उसकी इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए दीपके को पुलिस उठाकर ले गई है। और इसके अलावा दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तीन सदस्यों नेहा, अमीन और मनीष ने 23 दिनों तक चली भूख हड़ताल आज खत्म कर दी है। 23 दिनों तक भाई भूखे रहने के बाद आज बहुत बड़ी तादाद में हालांकि लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए भाई कई गिरफ्तार हुए हैं लोग। और ये भी खबर आई है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो इस प्रदर्शन को लेकर के भाई और भूख हड़ताल को लेकर के कई दिनों से चर्चा में रहे हैं, पता चला है कि सफदरजंग अस्पताल ने उनकी जो हेल्थ अपडेट जारी की है उसके अनुसार वांगचुक की जरूरी मेडिकल जांच के नतीजे सामान्य आए हैं। और सफदरजंग अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि सोनम वांगचुक का इलाज ठीक तरीके से चल रहा है, डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन आज ही भाई संसद का भारतीय पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है लोकसभा उसके सत्र के पहले दिन आज विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। यानी आज से सेशन शुरू हुआ लेकिन शुरू में ही हंगामा और उसके बाद भाई कार्यवाही स्थगित हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के महज 12 मिनट बाद ही लगातार शोर शराबे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने ये कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी।

0: ये भी बता दें भाई, खबर अभी अभी आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज अपना अनशन, अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। समाचार एजेंसी की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में अभिजीत दीपके ने अपनी हंगर स्ट्राइक, अपनी भूख हड़ताल खत्म की है और वो खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो

0: इशारा फिल्म का गीत और भाई इशारे इशारों में ये गीत कई बार हमने सुनवाया है और हमारे श्रोताओं को भाया है। वाल धीरे धीरे हम खबरों की ओर बढ़ रहे हैं, पर उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी
1: है। Like our radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो हम आपको रेट बताते हैं। भाई LemFi वाले एक पाउंड के बदले इस समय दे रहे हैं इंडियन करेंसी में 129.84 रुपीस, पाकिस्तानी 374.23, श्रीलंकन 452.43, बांग्लादेशी टकाज 165.95 और अफगानी 88.85।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And the gold is trading at the rate of 96.06 pounds per gram. इसे भाई सर्राफा जो बाजार है उसकी भाषा में कहते हैं सोना लुढ़का, कुछ कीमतें नहीं दिया।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
3: Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। और भाई इस समय हम आपको सुनाते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन। आज के चिंतन में हम जो आलेख शामिल कर रहे हैं वो हमें साउथ हॉल में श्री राम मंदिर के प्रेसिडेंट जय शर्मा ने भिजवाया है। जय शर्मा और उनकी धर्मपत्नी विभा शर्मा कहते हैं कि आज का चिंतन आप हमारी स्वर्गीय माता जी के नाम कर दीजिए। माँ शब्द भाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि एक एहसास है। उस रचनाकार का जो सृष्टि को रचता है, माँ भी तो वैसे ही अपनी संतान की रचना करती है। कहते हैं हमारी माता जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में सदगति प्रदान करें। और भाई इतनी लंबी उम्र 98 यानी 2 वर्ष और जीती तो शतक लगाने वाली थी माता जी श्रीमती शकुंतला कौशल जी। लेकिन भाई इस दीर्घायु के लिए हम लोग, हमारे समाज में जो लोग हैं वो मौर्न नहीं करते हैं, शोक नहीं प्रकट करते, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं उनके जीवन को। 98 वर्ष के इस दीर्घ काल में उन्होंने परिवार को, समाज को, अपने आसपास के लोगों को बहुत कुछ दिया। ज्ञान का भंडार थी माता जी। तो जय शर्मा कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार तो कल किया जाएगा हैनवर्थ क्रेमेटोरियम में दोपहर बाद 12:40 पर, और उसके बाद हम श्री राम मंदिर जाएंगे। लेकिन उनका ज्ञान, उनका प्रकाश हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा। जय कहते हैं कि चिंतन जो आज का है वो इस प्रकार है। आज का चिंतन,
1: चिंतन, चिंतन।
0: क्लास में टीचर एग्जाम ले रहा था, बच्चों को उन्होंने प्रश्न दिया, मां पर ऐसे लिखो, मां पर कुछ लिखो। कागज पर कलमें चलने लगे भाई, पेन से सभी बच्चे लिखने लगे, लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठा, सोच में गहरा डूबा हुआ था। उसकी आंसर शीट बिल्कुल कोरी थी, वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। टीचर ने देखा ये बच्चा किसी सोच में डूबा है, एग्जाम का समय निकला जा रहा है और ये कुछ नहीं लिख पा रहा है। टीचर ने पूछा, क्यों बेटा, मां पर ऐसे नहीं लिख सकते? अरे मां पर कुछ तो लिखो। बच्चा गंभीर होके कहता है, सर मैं मां पर क्या लिखूं, मां ने तो खुद मुझे लिखा है, मैं उसकी रचना हूं, वो रचयिता है, उसने अपने शरीर से मेरा शरीर बनाया है, मैं मां से बना हूं। बस सोचता हूं यही लिख दूं। ये बात सुनकर के भाई टीचर का तो मन गदगद हो गया, कहता तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम तो पास हो गए, मां के इस स्वरूप को पहचानो। मां कहते हैं कि ईश्वर सब जगह मौजूद नहीं रह सकता था, भाई है तो सर्वव्यापक, लेकिन उसका एहसास हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए परमात्मा ने मां को बनाया, ईश्वर का ही स्वरूप है। अब ईश्वर को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन मां तो वो पहली प्रतिमूर्ति है जिनका जन्म लेते ही हम दर्शन करते हैं, जो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, जीना सिखाती है। दुनिया दिखाई माँ ने हमें, दुनियादारी सिखाई माँ ने हमें। गरिमा में माँ है, महिमा में माँ है, अधूरा बिना माँ के परमात्मा। हाँ, माँ शब्द लिखें, परमात्मा लिखेंगे तो माँ के बिना नहीं लिखा जाएगा। परमात्मा, 2 बार माँ आता है इसमें। बच्चा कहता है ईश्वर को हमने नहीं देखा, पर माँ को देखा है, उसका स्वरूप बिल्कुल परमात्मा के जैसा है।

चिंतन। आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे, माँ की ममता को प्रणाम करते हुए। आज के चिंतन के लिए हमें आलेख भेजा ऑस्ट्रेलिया से जय शर्मा और विभा शर्मा ने। जय शर्मा साउथ हॉल में श्री राम मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और कहते हैं कि ये संस्कार भी माने ही दिए हैं कि जो हम धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर सेवा करते हैं। कहते हैं, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। भाई, आज का चिंतन, आज का विचार, जय कहते हैं हमारी स्वर्गीय पूजनीय माता श्री को समर्पित। माताजी 98 बरस की उम्र में इस सप्ताह ब्रह्मलीन हो गए, भगवान में विलीन हो गई, उनका निधन हो गया है। और कहते हैं कल हम अश्रुपूरित आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देंगे। कल हैनवर्थ क्रेमेटोरियम में दोपहर बाद 12:40 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद साउथ हॉल के किंग स्ट्रीट स्थित श्री राम मंदिर में हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जहां प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। जय भाई, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और क्योंकि आपकी पूजनीय माता श्री का आशीर्वाद लेने का हमें भी अवसर मिला था तो हम प्रणाम करते हैं उस हस्ती को। भर भाइयों, याद दिला दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।

0: और इसी बीच भाई चिंतन पर बहुत सारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत सारे श्रोताओं के संदेश। हमेशा की तरह वत्सला जी आपने लिख के भेजा है कुछ बहुत अच्छा। रमीला जी आपका संदेश मिला महेंद्र पटेल क्रोएडन से, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। शहर पम्मी स्लाव में है महेंद्र बरजारिया हैरो से, जगदीश जी बुशी से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वियना ऑस्ट्रिया से अनिल सोनी आज के चिंतन की प्रशंसा कर रहे हैं, रानी स्लाव में सुन रहे हैं। अरुणा और भूपेंद्र पटेल थैंक यू वेरी मच आपके संदेश के लिए। राजेंद्र राज जी, हरविंदर जी कहती है मॉर्निंग रवि जी ब्रिलियंट थॉट आज का बहुत अच्छा लगा। भरत गंगाराम जैस्मीन एज यूजुअल आपका संदेश बता रहा है, क्या आप हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रकाश सूथर नॉर्थोल्ट में है, प्रतिभा जी थैंक यू वेरी मच। हंसा बोरा हिना सलमा मेडस्टोन कैंट में सुन रही हैं, आंटी जी आपका आशीर्वाद भी चाहिए, थैंक यू वेरी मच। हेतल सोलंकी शोभना राय मिलन भाई आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप ही शक्ति हैं इस रेडियो की, आवाज इसका अंदाज इसके गीत संगीत सब कुछ आप ही की बदौलत हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई पैसे अपनों को भिजवाएं भारत में, अच्छा रेट मिल रहा है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 129.45 इंडियन रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप यू कैन सेंड द मनी। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg 10.99 and Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry 82A Syston Street West Lister LE1 2JU and 2A Rollout Sill Lister LE5 4UN.
3: क्या आप नर्स फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal. The youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
7: Nazar se nazar.
6: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio.

हमारे रेगुलर लिसनर विजय जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कहते हैं हमें भी हमारे जन्मदिन पर आशीर्वाद देना। दे दो भाई, ले लो, लूट लो, युग युग जियो, लंबी उम्र हो, जुड़े रहें हमारे साथ आप। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स।

0: वादा जी वादा, रोज मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे इसी जगह पर इसी तरह से।
1: Your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk.
0: और बहन भाइयों, Leica Radio Network की ओर से एक और सूचना हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि we are the exclusive radio partner for Diwali Story, the musical that sold out the Royal Albert Hall and now arrives at OVO Wembley Arena on Sunday 27th September. A student pre-show takes place from 5 PM to 5:45 PM. ये students के लिए भाई pre-show है, लेकिन उसके बाद the main event from 6:15 to 9:30 PM. तारीख 27 सितंबर, स्थान ओवो वेम्बली अरीना, नोट कर लीजिए भाई। क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन फालन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायण टू लाइफ एंड विद 4 चैप्टर्स, ए बिस्पोक इवेंट, सॉन्ग साउंड ट्रैक एंड ए फुल इंटरनेशनल कास्ट। टिकट्स के लिए नोट कीजिए www.diwalistory.com, diwalistory.com, अपनी टिकटों की व्यवस्था कर लीजिएगा। तो ये थी सूचना सर।
1: Leica Radio Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: बरसती आंखों की धार किसके नाम करूं, दर्द का अनमोल उपहार किसके नाम करूं,

0: संगीत के साथ कोई संदेश है तो वो मुंह से बोल के बताना है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आना। बस संदेश ये है कि जो हमारा लाइका एक्स्ट्रा है ना, उसका नया एपिसोड आया है, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि एपिसोड 25 में हम अपनी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपके साथ की बात करते हैं। कैच दिस एपिक कन्वर्सेशन विद डोनी ब्रेस्को, बाली ब्रह्म भट्ट, अनिका रूबी रजा, रेडियो वाली एंड अनिसा नासिर। क्या है कि भाई रेडियो प्रेजेंटर्स के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, कितना संघर्ष होता है भाई इस काम के पीछे, जो यहाँ माइक्रोफोन के सामने आकर के हम आप तक पहुँचते हैं, तो ये जरूर देखिएगा पॉडकास्ट एपिसोड 25 लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio. UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Sare Gamapa. Your voice could be the next big discovery.
3: Lester Mellor is back.
4: And the stage

0: बैक टू बैक संगीत सुना आपने, पहला गीत किशोर दा और रेखा जी की आवाजों में था फिल्म कश्मकश से, और ये गीत गंगा जमुना सरस्वती से लिया गया था, लता जी की आवाज थी नाचेगी सरस्वती। और भाना भाइयों, प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम भाग में मैं रवि शर्मा आपको फिर से स्वागत हम कहता हूं भाई। अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो 2 घंटे का कार्यक्रम आप मिस कर चुके हैं। अब एक भी गीत एक भी बात नहीं छूटनी चाहिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मनोरंजन प्रोग्राम दोपहर बाद 1 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। आइए जाने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके क्या रेट दे रहे हैं पाउंड का इस समय।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 129.45 rupees for 1 pound. एक पाउंड के बदले 129.45 रुपए दे रहे हैं, ये रेट चल रहा है। आप ब्रांच में जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पैसे भिजवा सकते हैं, या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनों को पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy to let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Odisha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
4: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
3: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
6: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
7: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
6: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
7: दिल तो टूट भी गया,
6: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
8: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
6: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
9: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
10: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
11: और लीजिए साहब, इस सप्ताह की आर्टिस्ट ऑफ द वीक बता दें आपको। अरे साहब, बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री हैं, अब तो पॉलिटिशियन भी हैं, नृत्यांगना भी हैं, खूबसूरत भी हैं, वो सीता भी हैं, गीता भी हैं, और भाई चर्चित बहुत हैं, पर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की आज भी वो ड्रीम गर्ल हैं। पर शरीफ नहीं है क्या? के शराफत छोड़ दी। द आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज हेमा मालिनी। हेमा जी, मुबारक हो, आप चर्चा में रहेंगी इस सप्ताह हमारे रेडियो पर।

0: बहुत सारे दिलों की धड़कन, बहुत सारे लोगों की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी सप्ताह हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं और उनकी बहुत सारी फिल्मों के गीत गूंजेंगे इस टाइटल के तहत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और भाई ये गीत सुनकर आपको लगेगा कि आप किसी मेले में या किसी तीर्थ स्थल पर आ गए या कहीं मौज मस्ती भरे माहौल में समा गए। ऐसे में भाई नाच गाना बैंड बाजा स्टॉल्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, खेल खिलौने होते हैं और भाई कहीं कहीं होते हैं मुकाबले खेलों के ही नहीं, दिमाग के भी, जानकारी के भी, हिस्ट्री के भी और पहेलियों के भी।

0: अवारा
1: नहीं
0: दीवाना
1: दीवाना नहीं अनजाना
2: अनजाना फिल्म की थी ये पहेलियां भाई ये बुझारत लता मंगेशकर मुकेश्वर साथियों की आवाज
3: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई भाइयों कुछ एक जानकारी आप तक पहुंचाते चले याद दिलाते चले कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन डिटेल्स एट laikaradio.com. तो साहब एक ये भी बताना है कि मेला 2026 लाइका रेडियो इज एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला और भाई उसकी धूमधाम से जो तैयारियां चल रही हैं उनके साथ भी हम आपको जोड़े रखेंगे जुड़े
3: ये है
5: लाइका रेडियो
6: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: मुसीबत यहाँ,
1: रोज मुसीबत यहाँ नहीं।
0: हर दिल इंसान,
1: दिल्ली अगर भाई हिंदुस्तान का दिल है तो मुंबई भारत का व्यापारिक केंद्र है और मनोरंजन की दुनिया भी है मुंबई, फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ।
0: रोज मुसीबत,
1: अब मुंबई नहीं, अब मुंबई है।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel वालों का वो संदेश एक बार फिर दोहरा दूं, आपको याद दिला दूं। भाई Southall Travel वाले कहते हैं कि वो जो एक संदेश था ना पहले, वो दे वांट टू टेल यू दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस, वो मशवरा वापस ले रहे हैं अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कहते हैं कि अब भाई खुल के घूम कर आइए दुबई में, और कंपेटिटिव दुबई डील्स के लिए Southall Travel का नंबर मिलाइए 0208-574-8410, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है
2: Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-39-9635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
3: Start.

0: Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: करेंसी रेट्स जानना चाहते हैं भाई, हम बताते हैं आपको। अगर पैसे अपनों को भिजवाने हैं तो नोट कीजिए भाई, इस समय रेट अच्छा चल रहा है। और कितना मिल रहा है एक पाउंड के बदले? वेल, अकॉर्डिंग टू लम्फाई

0: additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LEMFI now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Rahm Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKER Radio.
1: बात गोल्ड की करें तो साहब, कभी उछाला तो कभी क्या ढलान, लुढ़की, वैसे भाषा में बोलते हैं, सोने की कीमतें लुढ़की ढलान पर, ऊंचाइयों पर, इस समय ढलान पर है साहब। द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 96.09 पाउंड्स।
0: रॉम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, वाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट रॉम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: इस गीत के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है साहब, इतने बार लोगों ने सुना है, इतना इसको चुना है और अपनाया है, गुनगुनाया है, वही ये गीत जैसे ही धुन सुनाई पड़ती है समझ जाते हैं। लेकिन ये गीत जिन पर पिक्चराइज हुआ, किसी जमाने में भाई वो जुबली कुमार कहलाते थे, आज उनका जन्मदिन है तो क्यों ना उन्हें याद करें। 20 जुलाई 1929 में जन्मे थे जुबली कुमार। जुबली कुमार उन्हें इसलिए कहते थे कि भाई उनकी बहुत सारी फिल्में जो है वो 25 वीक से यानी 25 हफ्तों से ज्यादा चली, और सिल्वर जुबली मनाने के कारण राजेंद्र कुमार तुल्ली जो जुबली कुमार कहलाए। इनका जन्म तो हुआ था सियालकोट में, लेकिन पार्टीशन के बाद ये भारत आ गए और साहब जो पेशा, जो व्यवसाय इन्होंने चुना, अभिनय का, छा गए और एक जमाने में शायद सबसे महंगे एक्टर होते थे ये फिल्मी दुनिया में।

0: और इससे पहले कि महबूब नाराज होकर भाई लौट जाए, हम इस गीत को समझते याद दिलाते हुए कि आज राजेंद्र कुमार का जन्मदिन है साहब, याद करते हैं उन्हें, राजेंद्र कुमार तुली। कुछ फिल्मों के बहुत संवाद, उनकी अभिनय कला आज याद आती है, श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत हमने सूरज फिल्म से सुनवाया। और अब थोड़े से संदेश सुनवा के बता दूं कि धीरे धीरे कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Lister, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Middo Yogurt 10 kg 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West,

0: Lister LE1 2JU and 2A Rollout Cell Lister LE5 4UN.
1: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
0: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
2: in Dubai.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Leicester Miller is back.
5: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
4: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
8: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
9: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स and savories.
10: Abhi call kijiye 0116 202 1222 or visit Melton Road LE4 5EA.
9: Pooja Sweets and Savories.
11: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
12: Next,
11: Gold Afternoons with Bali Brambat on Leica Radio Midlands.
13: Manoranjan with Ravi Sharma.
14: लीजिए साहब, इससे पहले कि कार्यक्रम के समापन का ऐलान हो, आपको बता दें कि आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और अभिनेता शामिल हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह. वो भाई कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहते हैं, अभिनय के लिए तो अच्छे अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साहब आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर तोहफे में उनकी कौन सी फिल्म का कौन सा गीत दें. तो भाई गीत तो आपके लिए भी लगाना है क्योंकि आप में से भी बहुत सारे श्रोताओं का आज जन्मदिन है, तो जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं हम उन्हें मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहना चाह रहे हैं. और इसके साथ ही बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जिए हजारों साल.
11: Across the Midlands, this is Leica Radio on DAB and on
14: Leica Gold. भाई ये जो है संदेश थोड़ा सा पहले बज गया. हम जो गीत सुनवाना चाहते हैं आपको वो ये वाला है कि आपका जन्मदिन जीने वाले मुस्कुरा के जी, गुनगुना के जी,

0: खबर किसको कि कल क्या हो। अरे ये दो दिन की है जिंदगी,
1: दो दिन की है जिंदगी भाई। जीने वाले कर्जा उठा के जी, दूसरों का माल पचा के जी, खा के जी, और फिर शहर छोड़ के भाग जा के जी। ये जिंदगी बारंबार नहीं, ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम और खेलें कूदें अय्याशी करें, कोई और बात नहीं पूछेंगे हम। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हंसने हंसाने के लिए हम कुछ भी कहें, लेकिन हमारी चिंतन की बातें याद रखना, बाकी हंस के भूल जाना। आज जूही बब्बर भी अपना जन्मदिन मना रही है। लखनऊ में जन्मी थी 1979 में आज के दिन। और भाई गीत उन सब के लिए जिनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क।

भाई किरित भट्ट साहब आप जो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं वो हम यहाँ सुन पाने में या खोल पाने में असमर्थ हैं। आप लिख करके जो भी भेजेंगे वो लिखा हुआ हम जरूर ब्रॉडकास्ट कर देंगे, आपका बोला हुआ जो शब्द है वो यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि ये उस तरह से ये इक्विप्ड नहीं है स्टूडियो। तो लिख करके भेजिएगा 07424232323, दैट्स आवर नंबर स्टूडियो का। रेडिंग से नमिता जी आपका संदेश मिल गया है, थैंक यू वेरी मच, आप सुन रही हैं, जुड़ी हुई हमारे साथ, थैंक यू। और बहन भाइयों प्रोग्राम का आखिरी गीत आपसे इजाजत लेने के लिए और ये भी याद दिलाने के लिए कि बाली ब्रह्म भट्ट विल बी योर होस्ट आफ्टर 1 o'clock न्यूज, हमारी आपकी मुलाकात कल 10 बजे की खबरों के बाद। हैव ए सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: Both songs are amazing. लेकिन आपने कुछ नोट किया इन दो गानों के लिए में? The Singers. जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं राजेंद्र कुमार तुली, जुबली कुमार इनका दूसरा नाम, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एंड कमर्शियली सक्सेसफुल सुपरस्टार्स, 80 प्लस फिल्म्स इन 40 प्लस इयर्स, दैट्स राइट, इन्होंने किए थे। 20 जुलाई 1927 में सियालकोट में जन्मे हुए, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71 ऑन 12th ऑफ जुलाई 1999 इन मुंबई। हेंस इट इज हिज 97th बर्थ एनिवर्सरी। He died at the age of 71. He died a day after his son Kumar Gaurav's 43rd birthday in 1999. Kumar Gaurav's birthday, 11th July. He passed away 8 days before his 72nd birthday. His wife, Shukla Kumar. 3 children, including Kumar Gaurav, jinko inhone bade paimane se launch kiya tha. As an actor, a very intense, self-sacrificing and romantic roles इन्होंने अदा किए that deeply resonated with the family audiences. अब इनकी करियर देखा जाए तो शुरुआत तो ऐसे की थी जैसे कि डेब्यू अपियरेंस में उनका नाम ही नहीं था, अनक्रेडिटेड ऑन द स्क्रीन, दैट वॉज फिल्म पतंगा 1949 की, उसमें ही इज इन द फिल्म बट ही इज अनक्रेडिटेड इन द डेब्यू परफॉर्मेंस। फिर 1950 में एक दूसरी फिल्म आई जोगन एंड ही गॉट क्रेडिटेड ऑन द स्क्रीन अलोंग साइड दिलीप कुमार साहब। फिर 1949 से 1955 की ये मैं कहानी सुना रहा हूँ उनके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। ही मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू मुंबई फॉलोइंग द पार्टीशन and initially worked as an assistant director to H.S. Rawail before landing his breakthrough acting role in the hit movie Vachan, 1955 ki movie. Phir 1957 mein ek breakthrough mila, wahan stardom bhi mila. As the son of Nargis in Mehboob Khan's Oscar-nominated epic film Mother India, also starring Sunil Dutt, Raj Kumar. What a film that was. And then in the late 1950s and 1960s, the golden peak era. Ji haan, he dominated the box office with timeless romantic dramas and musicals. Dhool Ka Phool 1959 ki, jo यश चोपड़ा की डेब्यू डायरेक्शन थी। जी हाँ, पहली फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी उनके भाई के प्रोडक्शन के अंदर, बीआर चोपड़ा। गूंज उठी शहनाई 1959, मेरे महबूब 1963, तिलक मंदिर 1963, संगम 1964, आरजू 1965, सूरज 1966, अरे मैं भूल गया 1960 में तो दिल अपना और प्रीत पराई। और 1970s में ही ट्रांजिशन्ड इनटू कैरेक्टर रोल्स। द फोकस वाज बिहाइंड द कैमरा, क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू लॉन्च हिज ओन प्रोडक्शन हाउस। जी हाँ, ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसी खूबसूरत एक्टिंग फ्रॉम 1949 टू 1998 इन 49 इयर्स, एन एक्टर, अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। उनकी फिल्मों में देखा जाए तो एज अ प्रोड्यूसर 1970 में द ट्रेन फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी, इट वाज डायरेक्टेड बाय रविकांत नगाइच। फिर 1981 में लव स्टोरी, इट वाज डायरेक्टेड बाय राहुल रवायल टू लॉन्च हिज सन कुमार गौरव, एंड दैट वाज आल्सो अ लॉन्च पैड फॉर विजेता पंडित। एंड देन 1983 में लव स्टोरी के बाद लवर्स, जिसके डायरेक्टर थे भारती राज, मतलब ये फिल्में सारी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। 1986 में फिल्म नाम, जिसमें संजय कुमार भी थे विद कुमार गौरव ऑफ कोर्स, महेश भट्ट वाज द डायरेक्टर 1991 में फिल्म जुर्रत, जिसमें डेविड धवन, अभी उस फिल्म में स्क्रीन प्ले वॉज ऑल्सो बाय राजेंद्र कुमार एंड द फिल्म वॉज एडिटेड बाय राजेंद्र कुमार एंड डेविड धवन. लास्ट टाइम ऑन द स्क्रीन 1993 में फिल्म फूल उन्होंने प्रोड्यूस की थी. संगीतम श्रीनिवासन राव, दैट वॉज द डायरेक्टर इन दैट फिल्म. 1994 में एक इंग्लिश फिल्म जो थी जंगल बुक, he was the co-executive producer. It was produced in association with the Walt Disney Pictures, spearheaded by Rajendra Kumar's son-in-law Raju Patel. Ab jab Rajendra Kumar got nominated for Filmfare Awards, jaise ke 1964 mein film Dil Ek Mandir, usme best actor ka nomination mila, award nahi mila. तो विनर कौन थे? सुनील दत्त जी थे फॉर द फिल्म मुझे जीने दो. ही वॉज ठाकुर जरनैल सिंह इन दैट फिल्म. तो सुनील दत्त को अवार्ड मिला था. 1965 में फिल्म थी आई मिलन की बेला, जिसमें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला लेकिन अवार्ड नहीं मिला. तो किसको मिला? दिलीप कुमार साहब को मिला फॉर लीडर फिल्म एज एक्टेड एज विजय खन्ना. फिर 1965 में फिल्म संगम याद है? किसको नहीं याद. ही वॉज एक्चुअली चोजन एज द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब इनको दिया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला. इट वॉज नॉमिनेशन. तो नॉमिनेशन के बाद अवार्ड किसको मिला? नाना पालसीकर, हु एक्टेड एज जॉनी इन शहर और सपना. 1966 में ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर्स अवार्ड इन फिल्म आरजू. व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड व्हाट ब्यूटीफुल एक्टिंग. अवार्ड नहीं मिला तो किसको मिला? सुनील दत्त जी को मिला एज गोविंद लाल इन फिल्म खानदान. उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया था, नो डाउट अबाउट इट. सो ये है राजेंद्र कुमार जी की जो कहानी. मैंने अलग अलग सिंगर्स चूज किए, जैसे कि रफी साहब ने गाया ए नरगिसे मस्ताना, वो थी फिल्म आरजू. दूसरा गाना जो था जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दैट वॉज लता मंगेशकर एंड महेंद्र कपूर. नेक्स्ट गाना होगा मुकेश जी का गाया हुआ विद सुमन कल्याणपुर, जो पिक्चराइज हुआ राजेंद्र कुमार जी के पे. एंड देन किशोर कुमार जी पे एक ही गाना, दैट वॉज द ओनली सॉन्ग ही सैंग फॉर नौशाद साहब. एंड राजेंद्र कुमार जी के लिए ये गाना गाया था. वहाँ काफ़ी अनबन थी किशोर कुमार जी के साथ उनकी. वो कहानी मैं आपको थोड़ा झलक सुनाऊंगा क्योंकि उनकी बर्थडे एनिवर्सरी है. वी डोंट वांट टू टॉक बैड थिंग्स अबाउट हिम. हुस्ने जान आई धरा, वो तो फिल्म साथी का गाना जो है वो भी इतना खूबसूरत है. आप सुनते रहिएगा, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट, ब्रिंगिंग यू songs of Rajendra Kumar today.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: The stage is about to explode. Confirmed artist
6: Lember Hussain Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
5: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थी low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
11: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: 4 beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station. Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: You're listening to the tribute of Rajendra Kumar on his 97th birth anniversary on Leica Gold. ये गाना था फिल्म साथी का, जहां पे नौशाद साहब ने 18 साल बाद मुकेश जी को गवाया था ऑन राजेंद्र कुमार.

0: कितनी खूबसूरती से ये गाना बना, नौशाद साहब ने संगीत दिया फिल्म साथी का, इसमें वैजयंती माला भी थी। राजेंद्र कुमार जी उनके गाने आज पेश कर रहे हैं, ये मुकेश जी ने गाया। मैं अलग अलग सिंगर्स को ला रहा हूँ। नेक्स्ट गाना होगा किशोर दा पे, लेकिन कुछ ड्रामेबाजी हुई थी उसके पीछे। यहाँ भी ड्रामेबाजी तो हुई थी, 18 साल के बाद मुकेश जी को गवाया था, क्योंकि फेवरेट सिंगर राजेंद्र कुमार जी के रफी साहब थे, एंड राइटली सो, बिकॉज सारे गाने हिट हुआ करते थे।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो बात ऐसी थी कि जैसे मैंने कहा, 18 साल के बाद इन्होंने मुकेश जी को गवाया था, लेकिन the song went very well on Rajendra Kumar and he quite agreed afterwards as well. अब सभी जानते हैं कि किशोर कुमार कितने खुशगवार और मजाकिया इंसान थे। What we might not know is वो कितने उसूलों के पक्के और स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। अभी कुछ किस्से दोहराता हूँ मैं इसके बारे में। जैसे कि जब फिल्म गीत, 1970 की फिल्म थी गीत, बन रही थी, तब कल्याण जी आनंद जी को एक या दो गाने किशोरदा को देने थे। हीरो राजेंद्र कुमार उस फिल्म के थे, जो सिर्फ रफी साहब को ही पसंद करते थे। सो नतीजा ये हुआ कि कल्याण जी आनंद जी को अपना विचार बदलना पड़ा और गीत फिल्म में किशोरदा ने कोई गाने नहीं गाए। दो गाने सुपरहिट फिल्म के थे, जो उस फिल्म के थे, जो मेरे मितवा रफ़ी साहब ने गाया और जिसके सपने हमें रोज आते रहे। मतलब नो डाउट इट वाज अ म्यूजिकल सुपर डुपर हिट, वी कांट आर्ग्यू अबाउट दैट। 1971 में किशोरदा सैंग ओनली वन सॉन्ग इन आप आए बहार आई, एंड 1971 में सैंग वन सॉन्ग इन आप आए बहार आई। अब इन 1975 जब फिल्म सुनहरा संसार, 1975 की फिल्म थी, बन रही थी, तब म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद जी। अब अंटिल 1975 किशोर कुमार हैड नॉट संग एनी सॉन्ग्स फॉर नौशाद साहब। सो टाइम्स वर डिफरेंट, किशोर कुमार अपनी बुलंद पर थे और नौशाद जी की करियर वॉज अ बिट डाउन। सो हीरो थे राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, माला सिन्हा फिल्म में थे, और एक गाना किशोरदा ने आशा भोसले के साथ गाया, वो था हेलो हेलो क्या हाल है। जब फिल्म रिलीज हुई तब वो गाना आशा जी का और किशोरदा का ने जो गाया था वो फिल्म में नहीं था, तो उस गाने को हटा दिया गया और किशोरदा इतने नाराज हुए नौशाद जी पे, और उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि ये गाना क्यों फिल्म में नहीं है। नौशाद जी ने कहा, राजेंद्र कुमार जी आपके गाने के गाने से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हटा दिया गया। ही फेल्ट आपकी आवाज उन पे नहीं जच रही, क्योंकि रफी साहब की ही जचती है। दिस वॉज इट। किशोरदा वॉज एक्सट्रीमली अपसेट एंड डिसाइडेड नेवर टू सिंग फॉर राजेंद्र कुमार अगेन। कई बार उनको ऑफर दी गई बट ही डिक्लाइंड। एक बार 1979 में एक फिल्म थी बिन फेरे हम तेरे, विनोद मेहरा और आशा पारेख जी थे उसमें। उसमें किशोरदा को गाने के लिए कहा गया, एज सून एज ही फाउंड आउट के राजेंद्र कुमार थे इस फिल्म में, ही रिफ्यूज। तो म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना जी ने कहा कि देखो ये बैकग्राउंड सॉन्ग है, इट्स नॉट पिक्चराइज्ड ऑन राजेंद्र कुमार। सो ही एग्रीड एंड द टाइटल सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड बिन फेरे हम तेरे, अदरवाइज ही वुडंट हैव संग इट। व्हेन राजेंद्र कुमार वाज लॉन्चिंग हिज सन कुमार गौरव फॉर फिल्म लव स्टोरी, ही वॉन्टेड किशोरदा टू सिंग फॉर हिज सन, एंड किशोरदा फ्लैटली रिफ्यूज। ही सेड मैं गाना तो क्या, मैं उनको मिलना ही नहीं चाहता। तो आर डी बर्मन जी ने बहुत कोशिश की बट नो लक। इवेंचुअली आर डी बर्मन सजेस्टेड अमित कुमार, एंड किशोरदा ने कहा दैट आई डोंट माइंड, उस बच्चे की करियर बन रही है तो कुमार गौरव के ऊपर क्यों नहीं उसकी आवाज यूज की जाए। So he agreed. So this was the story, and the next song you're going to be hearing is that Kishore Kumar song which was sung with Asha Bhosle ji in film Sunehra Sansar but was not on the screen. Suniyega.
1: The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
0: If you are a nurse, a physiotherapist, occupational therapist or paramedic ready for a better work-life balance, Capita has hybrid clinical assessor roles across the Midlands. Expect office hours, no nights, every weekend off, a £39,500 starting salary and comprehensive training. Remote opportunities available. Search Capita Health Assessment Jobs.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. And drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery. Start touring.

0: जी हाँ, मैंने गीता दत्त जी के बारे में बताना है आपको, और जो गाने मैंने चुने हैं वो हर एक अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने जो काम किया वो गाने मैं पेश करूँगा। पहला गाना था एस डी बर्मन जी के साथ, ये दूसरा गाना जो था ठंडी हवा काली घटा, मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना, दैट वाज विद ओपी नैयर। ओपी नैयर जी के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गीत गाए थे उनके लिए। और आगे जाते हुए आई एम गोना डू हेमंत कुमार, फिर शंकर जयकिशन भी है जी, एंड मदन मोहन जी भी है, उन सब के साथ जो गाने इन्होंने गाए वो आपको मैं सुनाऊंगा। एंड कनू रॉय, वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके लिए गीता दत्त जी ने गाया था। एनीवे, लेट मी कम टू द पॉइंट हियर। शी वाज बोर्न ऑन 23rd नवंबर 1930 इन फरीदपुर, विच इज नाउ इन बांग्लादेश। गीता घोष रॉय चौधरी इनका पूरा नाम, एंड शी पास्ड अवे ऑन 20th of July 1972। हेंस वी आर रिमेम्बरिंग हर ऑन हर 54th डेथ एनिवर्सरी। इनके हस्बैंड जो थे एवरीबडी नोज गुरुदत्त जी, हु गॉट मैरिड 1953 में एंड पास्ड अवे। गुरुदत्त जी पास्ड अवे ऑन इन 1964 एंड शी कैरिड ऑन फ्रॉम देयर विद अ वेरी सैड लाइफ। एक्टिव फॉर 25 ईयर्स 1946 से लेकर 1971 तक 1200 हिंदी फिल्म गाने, उसके अलावा बंगाली क्लासिकल तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, नॉन फिल्मी गाने जो इन्होंने गाए थे नॉन फिल्म जॉनर के। अ प्लेबैक सिंगर हु सैंग हिंदी बंगाली क्लासिकल फिल्म एंड नॉन फिल्म जॉनर के, लेकिन हिंदी फिल्मों में 1200 गाने से ऊपर, व्हाट अ रिकॉर्ड। एंड आज भी उनके गाने सुनकर हम मतलब उत्सुक हो जाते हैं और कभी नहीं भूल सकते वो आवाज, द ओरिजिनल वॉइस ऑफ गीता दत्त। अब इनकी सैड लाइफ विद 6 डिजास्टर्स, सच्ची बताऊं इट मेक्स यू क्राई व्हेन यू थिंक ऑफ अ ग्रेट लेडी लाइक हर हैड 6 डिजास्टर्स इन हर लाइफ टाइम। डिजास्टर नंबर 1, शी बिलोंग टू अ वेल टू डू जमींदार फैमिली विद 10 चिल्ड्रन एंड दे लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग इन अ विलेज कॉल्ड इदिलपुर, दैट्स फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट। दे लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड दे मूव टू कैलकटा एंड आसाम। गीता वॉज देन 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की उम्र थी। 1942 में द पेरेंट्स मूव टू बॉम्बे एंड गीता स्टार्टेड स्कूलिंग इन बंगाली हाई स्कूल, उम्र थी 12 साल की। उसका डेब्यू हुआ के हनुमान प्रसाद, अ कंपोजर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर, ही ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड गीता इन सिंगिंग। देन ही लॉन्च्ड हर इन 1946, उम्र थी 16 साल की गीता की, इन अ मिथोलॉजिकल फिल्म भक्त प्रहलाद। के हनुमान प्रसाद वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, द सेम मैन हु ग्रूम्ड एंड ट्रेन्ड हर। शी वॉज गिवन 2 लाइन्स टू सिंग फॉर 2 सॉन्ग्स, पर एक एक्सपीरियंस था ना, एक शुरुआत थी। शी मेट गुरुदत्त इन 1951 ड्यूरिंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग्स फॉर अ फिल्म बाजी, उम्र थी 21 साल की। शी मेट द डायरेक्टर हु वॉज यंग एंड अपकमिंग गुरुदत्त, फेल इन लव, हु वुडंट, ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग मैन एंड शी वॉज वेरी गुड लुकिंग टू। दे गॉट मैरिड ऑन 26th of May 1953, गीता की उम्र थी 23 साल की। दे हैड 3 चिल्ड्रन, दे वर बोथ वेरी मच इन लव देन व्हेन दे गॉट मैरिड। तरुण हु गॉट who was born in 1954. That's right. 1953 mein shaadi hui, and 1954 mein Tarun ka janm hua, who passed away in 1985. Arun is the second son, who was born in 1956 and he passed away in 2014. Nina, the daughter, she was born in 1964. Now, disaster number two. Guru Dutt was to launch Geeta, Abhi Geeta Dutt, as singing star in the first CinemaScope movie, Gauri. But the project was shelved just a few days after her first shoot. And disaster number three, Guru Dutt was romantically involved with Wahida Rehman. Geeta Dutt took to drinking alcohol. The breakup affected her singing career. Disaster number four tha 1958 mein, jab Geeta 28 saal ki thi, S.D. Burman aur O.P. Nayyar ne badi koshish ki. They attempted to work with Geeta because unko unki awaaz pasand thi as a main singer of their compositions. She couldn't deliver. She could not deliver because she was into drinking. Awaaz saath nahi de rahi thi. So Asha Bhosle got into the scene. Disaster number five tha after Guru Dutt's death in 1964, she got into financial problems. Aise financial problems ke she had to take any kind of job she could get. And jaisa bhi gana usko milta tha, wo gaati rahi, stage shows karti rahi for any amount of money just to cope up with life. She had a bad time, but her drinking didn't stop. She got cirrhosis of liver. Disaster number six. She passed away on 20th July 1972 at a very young age of 41. We are talking about Geeta Dutt. Aaj main unke gaane sunane wala hoon. Aur gaano mein har ek music director alag hai. Jaise ki maine aapko S.D. Burman wala gana sunaya film Sujata ka, Kali Ghata Chhaye Mora, and uske baad Thandi Hawa Kali Ghata Geeta Dutt ka gaya hua. Abhi Mr. and Mrs. 55, kai baar Geeta Dutt ji gaane nahi gaati thi to koi aur singer gaata tha unke liye, lekin picturize unpe hota tha गाना. सो जरूरी नहीं है कि सारे गाने गीता दत्त जी के हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके ही गाने सुनाता रहूं. अब आगे जो गाना आएगा, दैट विल बी म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ हेमंत कुमार जी. फिल्म थी शर्त 1954 की. उसके बाद हम आपको सुनाएंगे भाई भाई फिल्म का गाना, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन. एंड उसके बाद शंकर जयकिशन को कैसे छोड़ सकते हैं हम. शंकर जयकिशन के लिए उन्होंने गाया था एक, काफी गाने तो गाए थे, लेकिन उनमें से एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा. एंड देन राउंड द सर्कल हम वापस आएंगे एस डी बर्मन के ऊपर और कुछ चटपटे गाने. एंड बिकॉज इट इज हर डेथ एनिवर्सरी, विल डू अ कपल ऑफ सैड सॉन्ग्स बिकॉज शी वेंट थ्रू द सिक्स डिजास्टर्स ऑफ हर लाइफ. Geeta Dutt.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can fetch up to 129.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान हैवान हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश।

0: ये गाने दोनों हिट है और एक्टर, ओ माय गॉड, यू कैन से ही इज द फाइनेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड सिनेमा, नसीरुद्दीन शाह, ओवर 100 फिल्म्स. इनका डेब्यू था 1975 में फिल्म निशांत से. बोर्न ऑन 20th ऑफ जुलाई 1950. And now he is 76 years young. 3 national awards, 3 Filmfare awards, Padma Shri, Padma Bhushan. Ji haan, inhone kya nahi kiya? English filmon mein Hollywood dekho, Bollywood dekho. He has conquered all of them. FTII Pune, 1973 ka batch tha. Usme bahut sare actor actresses ke naam shamil hai, unme se Nasiruddin Shah का भी नाम शामिल है. लेकिन इन्होंने वन नॉच हायर काम किया, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन दिल्ली, वहां से भी इन्होंने तालीम पाई. ही वाज बोर्न इन बाराबंकी, दैट्स उत्तर प्रदेश. एक्टिव सिंस 1972. जी हाँ, 72 की साल से वो एक्टिव थे, लेकिन डेब्यू था 1975 में. अगर हम इनके अवार्ड्स देखें तो देयर वाज आई थिंक नॉमिनेशंस में इनका नाम आता है फिल्म जुनून, जिसमें सपोर्ट एक्टिंग के लिए इनका नाम आया था. और ही वाज नॉमिनेटेड इन 1983 फॉर फिल्म बाजार, फिर फिल्म कथा, उसमें सपोर्ट रोल के लिए इनका नाम था 1984 में. मंदी, वो भी एक खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, उसमें सपोर्ट एक्टिंग के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया था. 1985 में फिल्म स्पर्श, जी हाँ, 1994 में फिल्म सर, उसमें सपोर्ट रोल के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया था. और नेगेटिव रोल जो इन्होंने किया था फिल्म मोहरा 1995 में, उसमें भी उनको नॉमिनेशन मिली थी. नाजायज, आपने अभी वो गाना सुना बरसात के मौसम में, एंड दैट पर्टिकुलर फिल्म नाजायज में 1996 में इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था. फिल्म चाहत, उसमें भी नेगेटिव रोल किया था. सरफरोश में भी नेगेटिव रोल किया था. इन सब फिल्मों में इनको नॉमिनेशंस दिए गए थे. चाइना गेट में ही गॉट द सपोर्ट, बेस्ट सपोर्ट एक्टिंग के लिए इनका नाम 1999 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में इनका नाम नॉमिनेट किया गया था. 2007 में नेगेटिव रोल अगेन इन फिल्म क्रिश, उसमें भी नॉमिनेट किए गए थे. एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म रिगार्डिंग अ बॉम्ब ब्लास्ट, दैट वाज ए वेंसडे, अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म इन 2008, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने इतना खूबसूरत एक्टिंग किया था, लेकिन ही गॉट अ नॉमिनेशन नॉट एन अवार्ड. 2012 में द डर्टी पिक्चर, उसमें सपोर्ट अवार्ड उनको दिया गया था. ही डायरेक्टेड, यूं तो यूं होता तो क्या होता, स्टारिंग इरफान खान, द लेट इरफान खान एंड कोंकणा सेन शर्मा, वो फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी. जी हाँ, we are talking about none other than Nasiruddin Shah, the great actor. Unke gaane sunenge, lekin hamare artist of the week happens to be Hema Malini ji. Aur aaj maine tribute kiya tha Rajendra Kumar ji ka, to Rajendra Kumar ji ke saath unka ek role tha Gora aur Kala mein, 1972 ki very early film. Ye gaana bahut kam sunai deta hai, I think Gana must have been played so long ago on Laika Gold, लेकिन आज मैं उखाड़ के लाया हूँ. इसके बोल हैं, पर्दा रुखे रोशन से हो हटा दो, और वहाँ पे प्रेमनाथ सिंहासन में बैठे हैं और चाबुक लेके आते हैं राजेंद्र कुमार, you know, and he was in a double role in that particular film Gora aur Kala, और उसमें डांस कर रही है हेमा मालिनी. इट्स अ ब्यूटिफुल डांस सीक्वेंस. 2023 फरवरी में ये गाना लाइका गोल्ड पे सुनाई दिया गया था. आज 2026 में वापस सुनाई देगा आपको फॉर अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 129.45. 129.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leica Radio. Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you. Lister, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 299 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Lister LE12JU and 2A Rollouts Hill, Lister LE54UN.
3: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
7: Lester Miller is back.
8: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
7: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
8: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
10: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd. Of October.
9: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
14: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
15: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: गोपी महाराज आपके लिए।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड।

0: उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald. plastic.com
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Making summer feel better on the Leica Radio Network.
1: मैंने कहा था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने संगीत दिया था राजेंद्र कुमार जी को, और ये है फिल्म आस का पंछी। उसमें सुबीर सेन जी ने गाया था। जी हाँ, सुबीर सेन एक्चुअली सैंग सॉन्ग फॉर दैट वाज पिक्चराइज्ड ऑन राजेंद्र कुमार। एंड इट्स गोना बी सैंडी शाह कमिंग नेक्स्ट ऑन लाइक अ कोल्ड and take you on his beautiful drive time. And not only that, on Leica Radio Midlands, it's the 377th day of Leica Radio Midlands, and you're going to have Raj Badan on Leica Radio Midlands. Bali Brahmat ka kal tak namaskar.

संगीत शंकर जयकिशन का विद राजेंद्र कुमार आज का पंछी एंड द सिंगर सुबीर सैन Somebody in Bushy, Jagdish Bhai, for you. Next song for Mrs. Sheikh.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything, from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
4: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
5: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
4: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
5: दिल तो टूट भी गया।
4: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
6: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
4: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी। गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394।
7: लेस्टर मेला इज बैक
8: एंड द स्टेज इज अबाउट टू एक्सप्लोड। कंफर्म्ड आर्टिस्ट
7: लेम्बर हुसैन पुरी। Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.
9: Laika Radio.
10: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी लाइका रेडियो नेटवर्क Broadcasting across the UK with Asian stations.
1: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this.

0: Mica Radio.
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwada.
2: Nazar se nazar.
1: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
5: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
0: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

0: Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Full travel at all protected.
3: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
4: Leica Radio.
5: Time for another Leica Love Classic.